किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर दृश्य कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू चलते हैं। सघन सा

की बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, ये लगती रहती है बैठी हुई अब

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

107 FM रेनबो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। और हर सुबह की तरह जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई हाजिर होता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज की सुबह पॉपी है आपके साथ ओनली ऑन 107.7 FM रेनबो पर। और हाँ, साथ में है एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, चलते रे इश्क में खो जाते हैं।

सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम

जी हाँ दोस्तों, नगाड़ा संग ढोल बजाने का वक्त तो आ ही गया है भाई, क्यों ना हो। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बार कुछ खास है। वो खास क्या है? वो है ब्रिक्स सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन इस बार होने जा रहा है भारतवर्ष ने। जी हाँ, भारत ने 1 जनवरी को 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। ये बहुत बहुत बहुत बड़ी बात है भारतवर्ष के लिए, हम हिंदुस्तानी के लिए, कि ये सम्मेलन हमारे यहाँ हो रहा है। और काफ़ी लोग, आप लोग ज़रूर सुन रहे होंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन, ये ब्रिक्स सम्मेलन है क्या, तो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया के तेज़ी से बदलते हुए इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मंच है। शुरू में इसका नाम सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, लेकिन आज ये ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन इसीलिए खास है क्योंकि ये भारत में हो रहा है।

जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम सा तो कोई नहीं, हमारे देश सा कोई नहीं और हमारे देश के नागरिक की तरह कोई नहीं। आपको बताना चाहेंगे आज हम ब्रिक्स के बारे में आप काफ़ी सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के हर केंद्र से ब्रिक्स के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि ये ब्रिक्स सम्मेलन होता क्या है। ब्रिक्स की शुरुआत साल 2006 में किया गया था और उसका नाम था ब्रिक, यानी कि BRIC, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। ये चार देशों ने पहला समिट साल 2009 में किया था और इसका सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो रशिया में हुआ था। 2011 में साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और ब्रिक्स बन गया। जी हाँ, BRICS। वैसे आपके दिमाग में जब हम ब्रिक की बात करते हैं, मतलब हमारे आम इंसान के दिमाग में ब्रिक यानी कि ईंटा का टुकड़ा, जी हाँ, एक ईंट वो दिमाग में आता है। वैसे हर मंजिल की शुरुआत एक ब्रिक से ही होती है, तो ये ब्रिक का नाम भी बड़ा कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक बैठा। और सिंस सो मेनी कंट्रीज यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जुड़ के बना ब्रिक्स। वैसे 2024 और 25 में इसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ और अब इसके 11 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया, जिसकी सदस्यता पर अभी जरा सी अस्पष्टता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं जाते हैं। ये सारे देश मिलकर दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या और ग्लोबल GDP के बड़े हिस्से का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये है ब्रिक्स सम्मेलन। थोड़ी बहुत जानकारी मैं और भी दूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जानकारी के साथ साथ हमारा जो म्यूजिकल सफर है संगीत में होना चाहिए, क्योंकि 10 से 11 हम सब काम करते करते कार्यक्रम को सुनते हैं और ऐसे में वो थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा एनर्जी लेवल चाहिए।

10:29 और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार मेजबान है भारत और मेहमान नवाजी करने जा रहा है और थीम है, आपको बताएं कि ब्रिक्स सम्मेलन का जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारत ने इस थीम को ह्यूमैनिटी फर्स्ट और लोग केंद्रित अप्रोच दिया है और इस बार जो शिरकत कर रहे हैं यानी कि जो मेहमान हिस्सा ले रहे हैं, आपको बताएं कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मेजबान हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। रशिया के व्लादिमिर पुतिन, ईरान के मसूद पजश्कियान, साउथ अफ्रीका के साइरिल रामाफोसा, इंडोनेशिया के प्रबोवा सुबांटियो और यूनाइटेड अरब के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नहियन भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम मेजबानों पर और आप समझ सकते हैं कि क्या खास, कितना खास है इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन जब हमारे पास पता नहीं कितने सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं एकता बनाए रखने का और बहुत सी बातें हैं जो व्यापार के साथ जुड़ी होंगी, जो सोशल कल्चरल लेन देन यानी कि देशों के बीच आपसी समझौता के बारे में बहुत सारी बातें होंगी और ये सारी बातें 12 और 13 सितंबर को होने जा रहा है और ये दिन स्वर्णाक्षरित होगा भारत के इतिहास में।

जाहिर सी बात है भाई, अगर चाहत होगी, अगर मोहब्बत होगी तो याद तो आएगी ही। वैसे मेरा तो ये कहना है कि भाई याद तो उनकी आती है जो दिल से निकलते हैं, जो वाकई दिल में हमेशा रहते हैं, उन्हें हम याद नहीं करते हैं। वो तो हमारे सांसों में बसते हैं, वो तो हमारे जहन में बसते हैं। वैसे ये बातें तो हो रही हैं इमोशनल, और आपको बता दूं कि 2247922131341 पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा हॉटलाइन नंबर। हमें बेसब्री से इंतज़ार है आप सभी का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है गपशप। और आपको बताएं कि वो कहते हैं ना कि हमारे सारे पहलू को हम ब्रिक्स की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे दूसरे पहलू को हम नहीं छोड़ सकते। तो पहली बात बता दूं, मौसम की जानकारी, मौसम कैसा रहने वाला है अगले 24 घंटे। तो

जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है वैसे में क्या से क्या हो सकता है। बस ये जान के रखिए कि 11 सितंबर यानी कि आज का दिन, आज का दिन कोलकाता और कोलकाता के आसपास का जो मौसम है वो तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस बनी रहेगी, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास बनी रहेगी। जैसे अभी बता दूं, अभी का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस हो रहा है इतनी ज़्यादा उमस है कि आपको लगेगा कि 37 डिग्रीज हैं। तो ये तो है टेम्परेचर का हाल। आपको बताएं कि दिन भर गरज के साथ तेज बारिश के पूरे आसार हैं, तो आपको कैरी करना है, आपको वो कहते हैं ना सूखा रखने का वो जो तरीका, अपने आपको सूख मतलब कीप योरसेल्फ ड्राई विथ अम्ब्रेलाज और रेनकोट, ये दोनों चीज़ें आप अपने साथ जरूर रखें। आसपास के इलाका में आपको बताएं जैसे कि बारासात, दमदम, हावड़ा, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन में भी हालात ऐसे ही रहेंगे और थोड़ी हवा 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली है, लेकिन ह्यूमिडिटी यानी कि वही उमस आर्द्रता वो होगा तकरीबन 90%। ये है आज का मौसम का हाल। और पिछले 24 घंटे में जो तापमान दर्ज किया गया था उसके बारे में बता दें, जी हाँ, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये थी पिछले 24 घंटे के बारे में, और जैसे कि बता दिया है हमने, तो आप अपने दिन का स्केड्यूल उस तरह से तैयार करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और रोमांटिक गीत सुनाती हूँ, और ये गीत हर आशिक, हर हसीना के दिल की जुबान है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, पॉपी है आपके साथ, ओनली ऑन 107।

0: ये आपकी आवाज भी बहुत मीठी है जैसा कि मैंने कहा, और आपकी जो सोच है, ये सोच बड़े, ये यही विचारों से ही हम ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपने कहा, जो रेफरेंस लिया कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो कुछ तो देखते हैं, कुछ तो समझते हैं आज के इस भारत का, आज ये नव भारत का जो इतना विशाल बना हुआ है, एक विश्व पटल पर हमारी एक अलग पहचान बनी हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दायित्व, कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी हैं जो हमें बेस लेवल पे करना चाहिए, और वो उसके बारे में तो हम हर बार जिक्र करते हैं। तो इस शोभोज जो हरा, जो हरेपन की बात पायल ने कही है, इस हरे को बचाना है, इसको सेव करना है, सेव द वर्ल्ड, सेव द एनवायरनमेंट, ये हमारे दिमाग में रखना है। वैसे 10:39 और भी बहुत सी बातें हैं मुझे आपको बताना है, तो बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। और आप सुन रहे हैं गपशप कार्यक्रम,
1: बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
2: एक चुटकी नुस्खे,
0: एक चुटकी नुस्खे के सेगमेंट में आज मैं लेकर आई हूँ आपके बहुत प्यारे प्यारे लवली लवली फुटवेयर्स को बताने के बारे में, उनका जिक्र करने के लिए। जी हाँ, बरसात का मौसम है और ऐसे में आपके जो फुटवेयर्स हैं, आपके जो जूते हैं, चप्पल हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए उसका रख रखाव किस तरह से करें, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चमड़े के जूते हो तो उन्हें दूर रखें, और इस मौसम के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है रबर, पीवीसी, इस टाइप के जूते आप पहने। और सदा सदा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस के लिए दो जोड़ी रखें, एक गीला हो तो आप दूसरा पहन सके। घर आते ही गीले जूते को कभी भी डायरेक्ट धूप या हीटर में नहीं सुखाना है, उससे क्या होगा कि जो चमड़ा है, जो लेदर है, वो फट जाएगी। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अंदर न्यूज़पेपर डाल दें, उसको ठूंस दें अंदर कागज से, और उससे क्या होगा कि अंदर का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सोख लिया जाएगा। सूखने के बाद ही पॉलिश करें, गीला रहने से फंगस लगता है और बड़ी बड़ी बदबू मारती है, तो इससे आप संभल के रहें। और हर बार पहनने के बाद थोड़ा सा टैल्कम पाउडर या बेकिंग सोडा, टैल्कम पाउडर अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो बेकिंग सोडा यूज़ करें, बेकिंग सोडा डालकर जूते को पहने। हफ्ते में एक बार जूते के अंदर सैनिटाइजर या डेटॉल पानी का हल्का स्प्रे करके उसे हवा में सुखाएं, ताकि आपके जो जूते हैं, आपके जो फुटवेयर हैं, वो जर्म फ्री रहें। और सच बात पूछिए तो बरसात शुरू होने से पहले, यानी कि जो रेनी सीजन है, उससे पहले ही लेदर पर वैक्स पॉलिश या वेजलिन की एक हल्की लेयर लगा दें, ताकि पानी जो है वो उसके ऊपर जम ना पाए और उस पर असर ना छोड़े। वाइट सोल वाले जूते पर पेट्रोलियम जेली लगाइए, और उसे इससे क्या होगा कि वो पीला नहीं पड़ेगा। एक ही जगह, ये बहुत ही मतलब आम बात है, हम एक ही जगह सारे जूते को ठूंस देते हैं, तो एक ही जगह दो तीन जूतों का ढेर ना रखिए, थोड़ा हवा उन्हें लगने दीजिए। जूते रखने की जगह पर दो तीन सिलिका जेल की पूड़ियाँ होती हैं, वो बाज़ार में मिलती हैं, उसे डाल दें, और ये दवाई के डिब्बे में भी डाली जाती हैं। चप्पल को हर दो दिन में पानी से धो के सुखाइए, कीचड़ से इन्फेक्शन होता है। अब लोगों का कहना है उफ मनी रास्ता ना पूरा दोई होएगा चे, तो उस दोई से अपने जूते को बचाना है, किस तरह से बचाना है वो मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नुस्खे आपके काम में आएंगे। वैसे हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है 10:51, और ऐसे में मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बस आज के दिन की खासियत बताऊँगी और एक खूबसूरत गीत सुनाऊँगी, शायद एक नहीं दो गीत मैं सुना पाऊँ। तो बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए 107 एफएम रेनबो पर, पॉपी है आपके साथ ओनली ऑन 107 लिए। शान और श्रेया को एक बार फिर

आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, सेगमेंट है आज के दिन की खासियत। तो आइए आज के दिन के बारे में बताएं। आज है 11 सितंबर और एक भारत के लिए ये गर्व की बात है। वो क्यों है वो तो हमने बताया कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। वैसे आज ही के दिन सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वो मशहूर भाषण दिया था जो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ था। उन्होंने उस दिन पूरी दुनिया को हिंदू धर्म और भारत की सहिष्णुता का परिचय कराया था। आज ही के दिन था। और आज ही के दिन हर साल 11 सितंबर को उन सभी लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने जंगल और वन्य जीव बचाने के लिए जान दी थी। ये दिन सन 1730 के खेजड़ली नरसंहार के याद में मनाया जाता है जब राजस्थान में कुछ कारणों से एक बहुत बड़ा आपदा हुई थी और इसी से प्रेरित होकर बाद में कुछ आंदोलन शुरू भी हुए थे। साथ ही आज एक बहुत ही दर्दनाक दिन माना जाता है क्योंकि आज से 25 साल पहले 11 सितंबर को सन 2001 में 19 आतंकवादियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका पर हमला किया था। 2 प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और एक पेंसिल्वानिया में गिरा। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। आज अमेरिका इसका 25वां एनिवर्सरी मना रहा है और ये एक दर्द है, ये एक ऐसा दर्द है जो शायद कभी भी ख़त्म ना हो और एक नासूर सा बना हुआ है।

केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है तो मुझे आपसे विदा लेना होगा, लेकिन आपको बता दें कि 11:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम, वही आपका पसंदीदा कार्यक्रम। लो आ गई उनकी याद, लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं, जी हाँ, आप 100.1 FM गोल्ड पर सुनेंगे पॉपी के साथ कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। फिलहाल आज बस इतना ही, इसके साथ ही पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का आप सुन रहे हैं टीम का तड़का टीम का तड़का टीम का तड़का 107 एफएम रेनबो पर टीम का तड़का टीम का तड़का टीम का तड़का 107 एफएम रेनबो पर रेनबो पर
3: जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बज गए हैं 3:04 और ये समय है अभी तीन का तड़का का। वैसे दोस्तों शो ये है ऐसा कि रंगीन रेडियो स्टेशन पे आप सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। ये है एफएम रेनबो, जी हाँ 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का दोपहर 3:02 पे बजता है और वक्त लगाता है अपनी उन धुनों को, उन पसंदीदा गीतों को जिनको आप सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। वैसे ये तीन का तड़का शो जिसका नाम है तीन का तड़का क्यों है, जहां हर दिन हम सुनाते हैं आपको बेहतरीन धुनों, कमाल के गाने और ढेर सारी गपशप का एक ऐसा तड़का जिससे आपकी सुस्ती छू मंतर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रिया सारिया और दिव्या कुमार की आवाज में फिल्म ABCD2 से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, सुन साथिया बेलिया, धड़कन की यही पुकार है, तेरी खामोशियों में छुपा मेरा बेइंतहा प्यार है। वैसे क्या बात है दोस्तों, जब कानों में गूंजती है सचिन जिगर की वो सुरीली धुन और प्रिया सरैया की आवाज में सुन साथिया बेलिया, तो मानो दिल की धड़कनें थमसी जाती है। इसी खूबसूरत एहसास के नाम एक छोटी सी बात कि इन धड़कनों में तेरी खामोशियों में छुपा मेरा बेइंतहा प्यार। वाह रे वाह, क्या सुन की ये स्क्रिप्ट है, इसकी कहानी है। वैसे लिखी थी मयूर पुरी ने इस बोल को और सचिन जिगर ने संगीत दिया था, बेहद सुंदर संगीत जिसे आज भी आप सुनते ही एहसास की उन गलियों में खो ही जाते हैं। वैसे दोस्तों आप सुन

है कार्यक्रम तीन का तड़का का शोर स्पेशल। इस गाने को हम बना रहे हैं, मेरा नाम रिंकू है और आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर। तो चलिए अगला गाना अमान मलिक और पलक मुचल की आवाज में फिर से।

0: యోజన ప్రస్తుతి
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों परियोजना प्रस्तुति में आज हम आपके लिए लाए हैं विषय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार की ये एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि BPL परिवारों की महिलाओं को लकड़ी, कोयले और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों के धुएं से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वच्छ LPG ईंधन उपलब्ध कराना है। दिसंबर 2024 तक इस योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर कुल 10.6 करोड़ कनेक्शन करने का लक्ष्य रखा है। इसके मुख्य उद्देश्य और लाभ इस प्रकार है, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से ये कनेक्शन घर की वयक्ष महिला मुखिया के नाम पर ही जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से होने वाली फेफड़े और आंखों की बीमारियों से बचाना है। इसके साथ ही मुफ्त नया गैस कनेक्शन भी दिलाना इस योजना का उद्देश्य है। आधिकारिक PMUY पोर्टल के तहत योग्य लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता। सरकार प्रति कनेक्शन 1,600 की वित्तीय सहायता देती है, जिसमें सुरक्षा जमा, पासबुक और पहली बार हुआ सिलेंडर एवं गैस चूल्हा मुफ्त प्रदान भी किया जाता है। उज्ज्वला 2.0 का विशेष प्रावधान यह है कि वर्ष 2021 में शुरू किए गए इसके दूसरे चरण में प्रवासी परिवारों के लिए नियमों को आसान बनाया जाए। वे अब कठिन पते के प्रमाण या राशन कार्ड के बिना केवल एक स्वयं घोषणा पत्र देकर नया कनेक्शन ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने जून 2026 में सब्सिडी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। सब्सिडी की राशि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT सब्सिडी मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। सिलेंडर की सीमा में कटौती करके पहले लाभार्थियों को साल में 9 से 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन नए नियम के अनुसार अब वित्तीय वर्ष में केवल पहले 4 रिफिल सिलेंडर पर ही 300 की सब्सिडी दी जाएगी। पांचवे एवं उसके बाद के सिलेंडर खरीदने पर लाभार्थियों को पूरी बाजार कीमत चुकानी होगी। सरकार का तर्क यह है कि गरीब परिवारों का औसत सालाना खर्च लगभग 4 सिलेंडर ही होता है, इसलिए दुरुपयोग करने के लिए यह सीमा तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक में निम्नलिखित योग्यताएं भी होनी आवश्यक है। आवेदक केवल एक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। घर में पहले से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी को अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अंत्योदय अन्न योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में से होना चाहिए। आवेदक महिला का आधार कार्ड और पते का प्रमाण के लिए राशन कार्ड, लाभार्थी और पारिवारिक व्यवस्थित सदस्यों का आधार नंबर भी देना जरूरी है। पात्र महिलाएं नजदीकी LPG वितरक, इंडियन गैस, भारत गैस या HP गैस के पास जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं या फिर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय उज्ज्वला योजना के विकल्प में उज्ज्वला 3.0, 2.0 एवं न्यू कनेक्शन चुनना अनिवार्य है ताकि कोई शुल्क ना लगे।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अशरार और अख्तर चंचल की आवाज में ये गीत फिल्म पैंथम से। वैसे स्टूडियो की घड़ी में 3:25 हो चुके हैं और अभी वक्त है हमारा थोड़े देर बाद उमंग कार्यक्रम का, जो सीधे दिल्ली से होता है। तब तक आप ये गीत सुनते रहिए और रिंकू को इजाजत दीजिए फिल्म टू स्टेट से आदित्य सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। सुन लीजिए ये गीत और रिंकू को इजाजत दीजिए। इसके बाद हम चलेंगे उमंग कार्यक्रम की ओर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओ, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है। मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
4: वी आर फाइन सर।
5: आई एम फाइन।
6: आई एम गुड सर।
3: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
7: आई लाइक प्लेइंग सर।
8: आई लाइक पेंटिंग सर।
3: वेरी गुड। Anyone else?
9: Sir, I like singing.
10: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?

0: here is something to do for you. Okay?
1: Okay.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स.
7: मेरा नाम साक्षी है. मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ. एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी. उसने अचानक से ब्रेक मारा. पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली. बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा. मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी. एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता.
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके.
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला. इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है.

0: तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई लामा है, सच में?
1: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे,
1: आ जाओ आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 9 लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
4: जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है।
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
8: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
7: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
8: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा।
7: अरे
8: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती, और माँ मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
7: क्या कहा, डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
8: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
7: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
8: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
7: कुछ नहीं होमी, बस करो।
8: माँ सुनो तो। अरे
4: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
5: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
3: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
4: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की, और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जे जे

0: स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
1: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गईं। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
0: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
2: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
3: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, अब बैठो, यहाँ बैठो।
2: जी जी सर, धन्यवाद।
3: होमी, जरा इसे देखो।
2: जी।
3: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
2: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
3: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
2: जी।
3: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
2: धन्यवाद सर।
0: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर दी बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थीं। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।

0: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
1: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
2: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
2: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Celluloid Super Hits.
3: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं हमारा सबसे पसंदीदा शो छायालोक, और उसमें सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स के जो गीत, जो गाने आपके इंतजार में है इस वक्त मेरी पास है, एक के साथ एक से बढ़कर एक गीत जो आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके कानों को बेहतरीन लगने के लिए आज इनको सुनाने वाली है सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म 1947 अर्थ से। वैसे इस ढलते शाम में चलो एक हम हसीन ख्वाब बुनते हैं और दुनिया के इस शोर शराबे से कहीं दूर दिल की धड़कन को सुनते हैं। दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर रिंगो के साथ आप बने रहिए यूं ही, क्योंकि गीतों का सफर और लड़ियां एक साथ एक एक करके आपके कानों तक हम यूं ही पहुंचाएंगे। और सुनेंगे अभी कुमार सानू, अभिजीत, सबीर कुमार, अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाज में ये गीत फिल्म आ अब लौट चले से।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

जी हाँ दोस्तों, मुसाफिरों की इस भीड़ में जब कोई हम वतन मिल जाता है तो परदेश के सोनेपन में भी एक अपनापन खिल ही जाता है। भाषा और लहजे से जब

फिल्म आ अब लौट चले से ये गीत, और मैं बता दूं कि 7:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर छायालोक का कार्यक्रम रिंकू के साथ, और अभी पेश है लकी अली और रमैया की आवाज में फिल्म कहो ना प्यारे से ये गीत।

धड़कन बनकर जो तुम दिल में समाए हो, सच कहूं जिंदगी में जीना तुम्ही ने सिखाया है। वैसे लोग मांगते होंगे खुदा से जहां भर की खुशियां, हमने तो हर दुबावें सिर्फ तुम्ही अपना बनाया है। आप सुन रहे थे इब्राहिम अश्क के लिखे बोल, राजेश रोशन के सजे संगीत के साथ लकी अली और रमैया की गाए हुए गीत फिल्म कहो ना प्यार से। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 7:25 और उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत आपकी इंतजार कर रही है। आइए सुनते हैं।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

हाँ दोस्तों, तुम पूछ लेना सुबह से ना कि हीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से। तुम्हारे यादों की खुशबू किस इस तरह से रूह में है बसी कि खुद को भूल जाते हैं हम अक्सर तुम्हारे ख्याल से। आप सुन रहे थे फिल्म यादें से ये गीत सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और अभी इस वक्त हम और एक गीत सोनू निगम की आवाज में सुनाए जा रहे हैं। आप सुनते रहिए 107 FM रेनबो पर छायालोक रिंकू के साथ।

जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन से ये गीत। वैसे इश्क का दर्द और दर्द का इश्क तो यूं ही बरकरार रहेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर हमारा जो पसंदीदा म्यूजिकल शो है छायालोक, रिंकू के साथ। और छायालोक के इस दर्द भरे गीतों के साथ कुछ मनचाही और मन लगी गीत भी है, तो आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में ये गीत हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, इस जिंदगी के लिए कोई ना कोई साथी तो जरूर चाहिए, क्योंकि गीत और साथी साथ में चले तो जिंदगी यूं ही बरकरार बनी रहती है। और 7:51 हो चुके हैं आपके लिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। ये गीत सुनते रहिए और मुझे साथ में चलने की इजाजत दीजिए।

0: जी दोस्तों, आप सुन रहे थे सोनू निगम मलका याग्निक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से ये गीत, और अभी बज चुके हैं 7:54। तो दोस्तों, रिंकू का जाने का समय आ गया है और हमारे साथ होंगी पूनम। पूनम जी, उन्हीं के साथ आप रहेंगे अगले एक घंटे तक। तब तक रिंकू के लिए नमस्कार।
1: 107 FM रेनबो पर पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। छाया लो, छाया लो।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:09 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायलो पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक। फिलहाल आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर। तो गीत संगीत का ये सफर चलता रहेगा अगले 9 बजे तक, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम और श्रवण, आवाजें कुमार शानू और अलका याग्निक और फिल्म का नाम साजन। और ये गाना और इससे पहले वाला गाना जो आपने सुना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त फिल्म मोहरा से, ये सभी 90 के दशक की फिल्में हैं। और वो दशक यानी 90 का दशक हिंदी सिनेमा और संगीत के इतिहास में एक बेहद सुनहरा और आप कह सकते हैं परिवर्तन भरा दौर माना जाता है। इस दौर में मेलोडियस संगीत, रोमांटिक गीत और वाइब्रेंट डांस नंबर्स का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जिसे नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, एआर रहमान और बीजू शाह जैसे संगीतकारों ने नए शिखर पर पहुंचाया। तो ऐसे ही कुछ खूबसूरत 90s के ये जो खूबसूरत नगमे हैं आप सब तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। अगला नगमा बेहद खूबसूरत, सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण और फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। एक बेहद सफल और आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म जिसके निर्देशक मंसूर खान और इसे नासिर हुसैन ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म से आमिर खान और जूही चावला ने

के तौर पर अपने लीड करियर की शुरुआत की थी और ये फिल्म उनके लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिलहाल 8:29 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम और श्रवण। आवाज कुमार शानू की और फिल्म का नाम आशिकी। और ये फिल्म है दो प्रेमियों की, और ये जो उनके आसपास ये जो कहानी घूमती है वो पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों को सामना करते हुए फिर इन दोनों प्रेमियों की कहानी है। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इस फिल्म के सारे गाने बेहद खूबसूरत हैं। ऐसा कोई भी गाना नहीं है जिसे सुनने का दिल ना करता हो। फिलहाल 8:42 और एक और खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुंचने के लिए बेचैन। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन और ललित, आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण और फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है।

और इस फिल्म के गाने तो इतने खूबसूरत हैं कि कुछ कुछ क्या बहुत कुछ होता है। यह फिल्म आधारित है दोस्ती और प्यार के त्रिकोण पर, जिसमें राहुल, अंजलि और टीना तीनों शामिल हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहुतों ने फिल्म देखी है और बहुतों ने नहीं देखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देखिए। और ये कुछ कुछ होता है में बहुत कुछ क्या होता है ये तो तभी पता चलेगा ना। फिलहाल 8:50 और अगले नगमे की तरफ बढ़ती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:55 में ना टॉरा पूनम के जाने का समय है एक कदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय।

0: करता हूँ।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।